0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
5: Pakistan, for the first time, experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that define a generation to the music that continues to inspire millions, the Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
6: We are
2: City FM 89.
0: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Non-stop hits.
6: You're listening to City FM 89.
7: Trending today.
8: Anne Hathaway will star opposite Tom Cruise in the next chapter of Days of Thunder. Paramount Pictures has dated the feature film sequel for June 2, 2028, when Tom Cruise and Anne Hathaway will hit the road almost 40 years after the original 1990 Tony Scott film was released. The project will be shot for IMAX screens and released exclusively in theaters for formats including Dolby Cinema and 4DX.
9: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
11: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
12: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
13: चिकन पॉक्स याद है ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
14: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
6: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89
2: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
15: नो टॉक नो टॉक नो टॉक नो टॉक नो टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक
16: बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
4: Hold on, special delivery coming through.
5: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
6: We're now live on WhatsApp.
7: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
6: It's as easy as 03142-898989.
5: Save our number now and WhatsApp us.
8: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back
9: starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: City FM 89
3: Your drive along companion
1: You're listening to
0: Non-stop hits
4: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you, just and, the you, music. Just and the music. You,
5: just and the back to back starts now.
6: Hey.

0: to Your Road Rage. Your Road Rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: You're listening to
1: Non-stop hits.
4: No talk. No talk. No talk. Just you, just and, you. The music.
5: And the music. Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: सिटी एफएम 89
3: ऑन द डायल।
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: यू आर लिसनिंग टू
5: नॉन स्टॉप हिट्स।
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
4: No talk.
5: Just you
4: and the music.
5: Back to back
4: starts now.